खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले। गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद। पीपड़ी ने फूक ले हवानी भरी के अंदर। ऑर्केस्ट्रा बजा।